शब्द सत सत प्रभुता, सुरत सत सज सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रसोए, सत सरोवर दे जन मान्या का क्रम तरमोल पछाने।

अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत में कोई ना लाखे। प्रभु के सेवक का को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचे उचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नाना सो सेवा दध पटाया, निकी किरी में का राखे पशु करे लस्कर।

0: ってなあ、ショーテラ。
1: Baba, Baba, what happened, Baba? We heard some noise. What happened, Baba?
2: Yes, this child was destined to die of cholera in Bandra. I asked him to stay back here and thus saved him. Beta, this Sai has taken care of you life after life. I never forsake my devotees. I am a slave of my devotees. Listen to me.
3: मेरे भक्त
4: दिल और आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी लीलाएं सुनेगा उसे सुख और शांति प्राप्त होगी। जो दिल से मेरी आराधना करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। मेरी कथाएं जीवनदायी हैं, उन्हें ध्यान से सुनो और ग्रहण करो।
5: जय बोलो साईनाथ महाराज की।
6: जय
5: जय बोलो साईनाथ महाराज की।
6: जय
5: जय बोलो साईनाथ महाराज की।
6: जय।

मारू वार महला पंजवां डखणे महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चाहो सज्ज

चार मुक्त चार सिद्ध मिलकै दूल्हे प्रभ की शरण परयो। मुक्त भयो चौहू जुग जान्यो जस कीर्त माथे शतर तरयो। राजा राम जबत को ना तरयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगता को नाम परयो रहाओ। संख चक्र माला तिलक बिराइत देख प्रताप जम डरयो। निरपो पहे राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिरयो। अमरीको दियो अपह पद राज भीखन अध करयो। नौ निध ठाकर दई सुदामै त्रु अटल अजहू न टरयो। भगत हेत मारियो हरनाक्ष नर सिंह रूप होए देह धरयो। नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो। मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारियो रे। पेट भरयो पशुआ ज्यों सोयो मनुख जन्म है हारयो रहाओ। साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदै झूठ। स्वान सूकर बायस जिवै पटकत चालियो ऊठ। आप सकाओ

राम कहे कबीर चेतै नहीं, मूर्ख मुक्त गवार राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया। अबल बल तोड़िया, अचल चल थपिया, अखड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृढ़ समानिया रहाओ। अर्ध कौ अर्धया, सर्द कौ सर्दया, सलल कौ सलल समान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताहे।

आओ लालच लागे जन्म गवाया माया परम पुलाहेगा धन जोबन का गर्व ना कीजै कागद ज्यों गल जाहेगा जो जमे आए केस गह पटकै ता दिन किश ना बसाहेगा सिमरन भजन दया नहकीनी तो मुख चोटा खाहेगा धर्म राय जब लेखा मांगै क्या मुख लैकै जाहेगा कहत कबीर सुनौरे संत हो साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शदर तरै रहाओ जा की शोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे नीचे उच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरै कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरै मारू सुख सागर सुर तर चिंता मानो काम तेन बस जा के रे चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निद कर तलता कै हर हर हरना जब सरसना अवर सब शाड बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण बेद बिद चौतीस अक्षर माही ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत